0: ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਪੋਇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬੜੇ ਲਾਜਵਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਖਲੀਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ।
1: जी सत श्री अकाल हुसनैन साहब, कैसे हैं? आपको भी आदा वर्ष करता हूँ जनाब।
0: थैंक यू
1: हरीम साहब। आप कैलगरी गए हुए थे, तशरीफ लाए, चलिए अच्छा है। जाने से पहले मैं मुलाकात कर लूंगा कल वाल आपसे, क्योंकि यादें आपसे बड़ी वाबस्ता। नहीं नहीं, बिल्कुल हाजिर हूँगा, और स्पेशली मेहमानों से तो हमारी बड़ी खातिर तवाजो और मोहब्बत रहती है जनाब।
0: आपके साथ बातचीत कर लेंगे हम जब आओगे किसी दिन।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपकी टॉपिक के मुताबिक बात दरअसल ये है दर्शन साहब, देखिए ये चीजों में असर था पहले, ऐसा नहीं है कि पंजाब में मानते या इंडिया में, वजह थी क्योंकि वाकया पेश आते थे तो एक दूसरे से, उस जमाने में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था। तो एक जगह आपने देखी होगी पंजाब में भी है, वो क्या है कि बड़ा झाड़ होता था, उसके अतराफ कैरी होती थी बनी हुई, यानी कि एक ऐसी बैठने की बेंच जैसी, सीमेंट की या पत्ते की, कच्ची की बना लेते थे उसको, यानी मिट्टी की, तो उसमें बैठ के सारे लोग बातचीत करते थे। उसको बोलते थे खिस्सा दर खिस्सा जगह।
0: जी जी,
1: यानी वाकई पे वाकई सुनाते, यार तुसी सुनाओ की हाल है, घर में की चक्कर है, वो यार वो बीमार हो गया सी, कैसा कैसा हुआ जरा बता। अब वो बोलता है वो फुला आदमी आया था, या वो यार वो बंदे दे नजर दे खराब है सी, तुसी एक काम करो उसे बर्तन गिलास तुसी अलग रख दो। अब वो क्योंकि दूसरा बंदा अगर निकालेंगे तो मिलेगा नहीं आराम का, लिहाजा उसी को रहने दो लेकिन उसके बर्तन अलग कर दो। ये जो डायरेक्शन सारे मिलके देते थे, उसमें कोई सियाना तेज दिमाग वाला होता तो उन्हें बताता था साबित करके कि भाई देखो इससे ये असर हुआ। और ये सारी चीजें जो है मुख्तलिफ किताबों में आज भी लिखी हुई है पुरानी। मुझे याद है दादब्बा के पास एक, अमृतसर के गुरुद्वारे साहब के पास से किताब पुरानी थी लेके आए थे, जो प्रिंट हुई हुई थी उस जमाने में अमृतसर में उर्दू में। उसमें लिखा हुआ था फतुहात गैबी के वाकयात। अब जब मैं सातवीं जमात में था, शुरू से बहुत तेज बच्चा हूँ मैं पढ़ने में, उर्दू फारसी अरबी तीनों पे कमांड है मेरा, तो मैं बोलता था पता नहीं क्या चीज है। अब जो मैं पढ़ने लगा तो मेरे समझ के ऊपर से चले गई वो, मैं तो बच्चा था ना, बात चीजें उसमें अजीब गरीब लिखी हुई थी, लेकिन वो जैसा जैसा शऊर आया मैं देखा कि भाई अभी वाकया है, बाकी सच होता है। तो उसमें एक वाकया छोटा सा आया था, मैं आपको बता देता हूँ कि एक गांव में पंजाब के किसी इलाके में, आपको मालूम है वो दाची बोलते ना आप लोग, ऊंट पे जो जाते क्या बोलते हो,
0: ऊंटनी बोलते हैं उसको,
1: हाँ ऊंटनी को, तो वो सुर्ख ऊंट था किसी जमाने में कहीं अमृतसर के करीबी दूसरे गाँव में। तो जब ये कोई बंदा लेके गया तो उसने कहा यार तू यहाँ क्यों लाया ये ऊंट। बोले क्यों यार क्या हुआ। बोले हमारे गांव में एक बंदा है जिसकी नजर ऐसी है कि जब वो तेरे ऊंट को देख के बोलेगा ना क्या चंगा ऊंट है, बोलते ही तेरा ऊंट गिरेगा और पैरा हाथ मारने लगेगा, तड़पने लगेगा। बोले अच्छा। बोले कहाँ है जरा वो बंदे को तो बुला ले। तो बोले तेरे पास ऐसी क्या चीज है जो इतने दावे से बोला। बोला मैं इतना अच्छा ऊंट रखता हूँ तो अपने साथ कुछ हिफाजत का, सुरक्षा का इंतजाम भी रखता हूँ, बुला तो सही जरा उसको। तो जाके उसको लड़के बोले भाई वो ऊंट आया गाँव में बड़ा जबरदस्त है। बोला कहाँ है। बोले फुला जगह ठहरा हुआ है झाड़ के पास, चल चल चल। बोल के तेजी से भागते हुए जैसे ही ये ऊंट पे नजर मारा, लेकिन नजर का इसका असर हुआ ही नहीं। ये परेशान, बोले लोग परेशान, यार ये कैसा हो गया, आज तक तो हर चीज गिर जाती थी, टूट जाती थी, ये ऊंट नहीं हुआ। इतने में ये जो बंदा ऊंट को देख रहा था ना, ये ऊंट इसके पे से नजर हटाते हुए कुछ पढ़ रहा था, इतने में इस पे नजर डाला जो ऊंट को देख रहा था वो बदनीयत, जैसे इस पे नजर मारा वो बदना नीचे गिर गया, गिर के मछली की तड़प तड़पने लगा, पेट पकड़ लिया। बोला पता नहीं क्या हुआ मुझे। बोला आइंदा से कभी किसी को नहीं देखना, तेरी जितनी ताकत थी मैं सल्प कर लिया हूं। बोला सल्प यानी उसको निकाल दिया तेरे अंदर से, अब तू जा, तो किसी को नुकसान देने वाला नहीं होगा, तेरा बड़ा चर्चा सुना था मैं, इसलिए आज आया था तेरा हिसाब करने के लिए, अब जा, तेरे को मैं बिल्कुल ब्लैंक कर दिया। तो ये जो चीजें थे ये हकीकतन थे, हम आज नहीं समझते।
0: ये तो चलो खलील जी थी, एक बात हमने और भी की है कि अगर पानी हमारे में मक्खी गिर जाए तो हम पानी गिर देंगे, अगर घी में गिर जाए तो घी गिरेंगे, मक्खी निकाल के फेंक देंगे।
1: नहीं, मच्छी निकाल के घी में से इतना फेंकेंगे जितने हिस्से पे वो है, लेकिन आप ये देखिए
0: क्योंकि कीमती है
1: पानी, नहीं, पानी सारा इसलिए फेंक देते हैं कि पानी की खासियत यह है, तासीर यह है कि जिस चीज में वो पड़ता है वो उसको अपने रंग में ले लेता
0: जी।
1: तो नापाक चीज हुई तो सारी चीज नापाक हो गई बोल के फेंकते हैं। घी का, तेल का, दूसरे का ऐसा मामला नहीं है। इसमें क्या है, बहुत सी चीजें, ये भी वाकया तो उसमें लिखे थे, उसका नाम था सेहत व जिंदगी के पहलू। और एक बात आपके प्रोग्राम में बोलते चलूं कि अक्सर आपने देखा होगा, ये सुना होगा पता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको और आपके सामईन को कि अगर आप सुबह में सो के उठने के बाद आपने गौर किया कि एक बालिश या 6 इंच आपका तकिया पीलो जिस पे सर रख के सोते वो नीचे की तरफ आ गया, तो समझ जाना कि आप बीमार होने वाले हैं। और अगर ऊपर की तरफ खिसक गया तो समझ जाना कि सेहत याबी हो रही। तो ये भी अलामतें होती हैं, इसको इंडिकेशंस बोलते हैं, ये स्वयं परमात्मा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से आते हैं आपको, लेकिन क्योंकि आपके इल्म में नहीं है ये क्या चीज है तो आप बर्दाश्त उसको समझा नहीं सकते। आप समझ रहे मेरी बात, एक नई चीज आपके साथ हुई तो आप बोलते हैं क्या चीज है यार ये मेरे साथ। तो ये चीजें हैं, बहरहाल इसके ऊपर बड़ी प्यारी चीज याद आई, वो ये है कि ये हादसात ना ये समझे अभी के मैं पस्त हूं, मैं शिकस्ता हो के भी ना काबिले शिकस्ता हूं मैं, मताए दर से दिल माला माल है मेरा, जमाना क्यों समझता है मुझे कि मैं तंग दस्त हूं।
0: क्या बात, क्या बात, चलो
1: क्या ख्याल, क्या ख्याल, क्या ख्याल,
0: थैंक यू।
1: दुआओं की दरखास्त है आपसे जनाब, सत श्री अकाल सर,
2: सलामत रहे।
0: सो दोस्तों 647-367-5353 ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਪਾਂਸਰ ਬ੍ਰਮਟਨ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ, ਬ੍ਰਮਟਨ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ 100 Kennedy Road। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ A to Z, ਕੋਈ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ रेस्टोरेंट ले, कोई ग्रोसरी या बर्तन चाहिए होए, घर दे विच वरत्या जाण वाला कोई औजार चाहिए तुहानू, इन्हां दिनां दे विच अक्सर असीं घरां दे विच छोटे मोटी फुल्लां पौद्यां नूं लगाउणे आ या कोई होर छोटे मोटे बाग बगीचा असीं बनाउणे, इन्हां दिनां दे विच तुसीं कोई भी छोटा मोटा औजार लै सकदे हो, छोटी मोटी कोई दवाई तुहानू चाहीदी है घर दे विच वरती जाण वाली, फस्ट एड दे तौर ते जो असीं अक्सर घरां दे विच रखते सी, तुसीं ब्रम्पटन कैश एंड कैरी तो लै सकते हो। डिस्पोजेबल समान किन्नी भी गिनती दे विच चाहिदा होवे, किसी भी डिजाइन दे विच तुहानू मिल सकता है। घर दे विच कोई पंजाबी थीम उसारना है, घर दे विच कोई फंक्शन है, मेहंदी है, कोई हल्दी है, या कोई होर मंगनी है, शादी है, कोई किसी किस्म का कोई भी फंक्शन है, पंजाबी थीम डिवेलप करना तो पंजाबी सभ्याचार दे नाल रिलेटेड कोई भी चीज तुहानू चाहिए ब्रम्पटन कैश एंड कैरी तो मिल सकती है। 100 Kennedy Road 905-230-4800 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਸਕੋ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਟੋਰ ਬ੍ਰਮਟਨ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ। ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਪਾਂਸਰ ਵਿਲੇਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾਮ, ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਕੇਟਰਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 100-125 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੁਫੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ 40-50 ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਮਿਠਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਮਿਠਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਿਫਿਨ ਲਗਵਾਉਣਾ 7 ਦਿਨ ਲਈ, 6 ਦਿਨ ਲਈ, 5 ਦਿਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ 114 Kennedy Road, ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905-450-3333 ਔਰ 6300 Erin Mill Parkway, ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905-542-1333। ਵਿਲੇਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲੰਡਨ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਔਰ ਵਿੰਡਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਪਿੱਟੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੂਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਨੀਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉੱਚੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੋ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਕੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਕੀਆ ਨੁਸੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ।

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: पंजाब के अमीर विरसे की पुक्कल चो यादा दे संतूरी सफर का हम सफर सांझा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दिया ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
3: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
4: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहिब आवे चित दे महावाक अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: ट्रक सेल वालियां कोल जा, 12 महीने काम पाओ ते नाले चंगे डॉलर कमाओ।
1: कवालटी लॉजिस्टिक इंक, जिन्हां नूं पाल है काबिल ते ईमानदार ट्रक ड्राइवर्स, ट्राला ड्राइवर्स ते ओनर ऑपरेटर्स दी। वधेरे जानकारी लई कवालटी लॉजिस्टिक इंक दे जसवीर होरां नूं कॉल करो
0: 416-717-2929
1: 416-717-2929 कवालटी लॉजिस्टिक इंक 14 स्टेनवे बुलेवर्ड यूनिट 4 इटोबिको।
2: ओहो, सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
3: ले आपां हुणे करदे आं संधू साहब नाल गल ते करदे आं मसले दा हल।
2: एसी, फर्नेस, गैस लाइन, वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन, नाउ एयर कंफर्ट ते जतिंदर संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640
4: 647-706-6640।

0: टीका टिप्पणी होवेगी, चलंत मुद्दियां ते मसलियां ते
1: तिरछी नजर रवेगी, कनेडा ते दुनिया दी सियासत ते
0: छह पर लगेगी नवे पुराने गीतां दी
1: बातां होणगियां सभ्याचार ते अमीर विरसे दियां।
0: सुनना जरूर लाइव शो विद शमी पठल 5:30 AM ते सोमवार तो शुक्रवार।
1: बिजनेस दी प्रमोशन ली आज ही कॉल करो 416-917-7063 ते 416-917-7763।

0: दे वीजे री सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
3: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दियां बेस्ट डील ले याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
4: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: सांझा विरसा मीडिया ले आए ने सेकंड एनुअल पिकनिक
1: संडे 23 अगस्त 11 AM टू 4 PM एट बल्ले बल्ले फार्म्स।
0: अनलिमिटेड फन मस्ती ते अपने आंदा होएगा साथ भंगड़ा गिद्दा गेम्स फूड स्टॉल्स मेहंदी सब कुछ रीजनेबल रेट्स ते।
1: तुसी अपनिया डिशेस भी बना के ले आ सकते हो। पूरा पिकनिक वाला माहौल पंजाब वाली वाइब्स। आ जाओ फिर 23 अगस्त दिन एतवार सवेरे 11 बजे एट बल्ले बल्ले फार्म्स 13219 ट्रिंकूसी रोड कैलेडन।
0: जानकारी जा स्पॉन्सरशिप ले हरजीत जजुआ नु कॉल करो 647-835-5494।
2: ओए ट्रक काला लिया जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां की करा।
3: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
4: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन।
5: इत्थे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवें स्टाइल दीआं मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है। इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है। जे तुसीं ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
3: कॉल करो जे एंड गैरी नूं
5: 905-459-5533
3: 905-459-5533
5: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।

0: स्वीट फैक्टरी जिथे भाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन तीन लोकेशंस तो सर्व कर देने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165।
1: ओहो, सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
2: ले आपा हुणे करदे आ संधू साहब ना गल ते करदे आ।

0: ड्राइव कर रहे हो? शोनो एंजॉय कर रहे हो? कुछ बोल रहे हो?
1: ड्राइविंग लाइसेंस?
0: नो.
1: पुलिस ऑफिसर?
0: नो नो.
1: ट्रैफिक लाइसेंस?
0: नो.
1: देन
2: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज. मोस्ट ऑफ इंटोरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर ले. आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज ना काम कर रहे पवन कौर गिल. 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल

0: भी पहुंचो 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9054512600।
1: हेलो ब्रो, किथे है तू?
2: मैं क्लाइंट नु मिलन जा रहा, सोच रहा सी टिम हॉर्टन्स जो बैठ जाइए।
1: ओ यार, ये तो ओल्ड स्कूल हो गया, हुन तक क्लाइंट मीटिंग्स क्लासी होनी चाहिए ने। नजारा रेस्टोरेंट लेके जाओ ना नु, प्राइवेट बूथ्स ने, फुल प्राइवेसी मिलती है, फ्री वाईफाई ते लग्जरी एंबियंस, बिजनेस मीटिंग भी सेट हो जांदी है ते खाना भी बहुत वधिया।
2: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग हो गई।
1: नजारा रेस्टोरेंट, 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन, मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी। हुने कॉल करो 9054512600, 9054512600।

0: ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6478741313 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਬਸ ਧਿਆਨ ਰਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਉ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿਉ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੱਲ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਉ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ, ਜੁੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਤਾਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੱਗੜ। 10:14 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਅਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੀ ਲਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹ 10 ਵਜੇ, ਸੋ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਉੱਠਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘਟਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਟਾਂਕੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਗੇਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰਾਂਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸਾਰਾਂਸ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇੰਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਸਾਰਾਂਸ਼, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ।
1: ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 4372-2341-75
0: ਜੀ। ਤੇ ਦੋ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ?
1: ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਪਕਾ ਸਟੇਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇ ਪੀਆਰ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਮੇ ਕਹੀਂ ਵੀ ਰਹਤੇ ਹੈ, ਇਸਸੇ ਬੜੀਆ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਤਾ ਆਪਕੋ। ਰੀਜ਼ਨ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿਆ ਹੈ, 50,000 ਸੇ ਲੈ ਕੇ 1,70,000 ਤੱਕ। ਇੰਟਰੈਸਟ ਰੇਟ ਕਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੇ 2 ਸਾਲ 0%, ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਕਬ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, 2.5 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਬ ਵਿਆਜ ਰੇਟ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, 2.5% ਮਹੀਨੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਕਾ 2.5%। ਤੋ ਐਸਾ ਲੋਨ ਆਪਕੋ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਤਾ, ਔਰ ਅਸਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਲਗਤੇ ਹੈ ਆਪਕੇ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, 8 ਸਾਲ ਸੇ ਬਹੁਤੋ ਕੋ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਕਾਲ ਕਰੇ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਏ, ਆਫਿਸ ਆਏ।
0: ਔਰ ਜੈਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ 4 ਹੈ ਤੋ ਉਨਕਾ ਕਿਤਨਾ ਕਾ ਬਨ ਜਾਤਾ ਲੋਨ ਜੋ ਉਨਕੋ ਮਿਲੇਗਾ?
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਨ ਆਫਟਰ ਇਸ ਪੇ ਚਲਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, $160,000 ਇਸ ਕੇਸ ਮੇ ਉਨਕੋ ਆਏਗਾ। ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋ ਆਰਾਮ ਸੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਏਕ ਤੀਰ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਆਪਨੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰੇ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਔਨ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਆਪਕੋ $1,60,000 ਆਪਕੇ ਖਾਤੇ ਮੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਕੇ ਬੱਚੇ 11 ਸਾਲ ਸੇ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਕੀ ਜੋ ਕਾਲਜ ਕੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਮਤਲਬ आपको बहुत बेनिफिट है ऐसे फैमिलीज विद किड्स को, तो कॉल करें, असेसमेंट कराएं। ऑफर कोई चलाती नहीं है, आसान से कोर्सेज हम पूरे दिन तो लगे रहते हैं, फोन पर क्लास अटेंड करेंगे, साथ में लोन आएगा इतना बढ़िया जो कि 0% पे है।
0: अच्छा कोर्सेज कौन कौन से हैं उनके बारे में बताएं थोड़ा सा।
1: हाँ जी, तो जो मोस्ट पॉपुलर है वो 2 साल का बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें फंडिंग डबल आती है लोन की, और बाकी अकाउंटिंग भी है, हॉस्पिटैलिटी भी है, स्पेसिफिक हेल्थ केयर के कोर्सेज भी है हमारे पास जो कि थोड़ा बहुत कॉलेज जाना पड़ता है उनमें, PDSW हो गया, अर्ली चाइल्डहुड असिस्टेंट हो गया, लेकिन जो मेन पॉपुलर है फुली ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बिना 2 से 3 घंटे क्लासेज है। कुछ कोर्सेज ऐसे जिनमें क्लासेज ही नहीं है, टीचर ही नहीं है, तो वो तो और इजी है। इसलिए आप स्किल डेवलप करें, फंडिंग अपने अकाउंट में हासिल करें और कॉल करें, हमारे ऑफिस आए।
0: अच्छा जब कोर्सेज कर लेते हैं तो जॉब अवेलेबिलिटी होती है कि नहीं, अगर ना मिले जॉब उनको फिर?
1: हाँ जी, अगर जॉब नहीं मिलती तो ये मतलब ये ऐसा हो गया, अगर आपने गाड़ी का लोन लिया दे नहीं पा रहे तो गाड़ी उठा लेंगे, घर का लोन लिया किस्त नहीं दे पा रहे तो घर उठा लेंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट के आपके कागज उठा लेगी एडुकेशन के नहीं, तो इसमें आप गवर्नमेंट से कॉल कर सकते हैं, आपका लोन डेफर हो जाता है 1 साल 2 साल 3 साल। तो इस प्रिय लोन असली कागज के साथ कहीं नहीं मिल सकता आपको, इसलिए आप पीछे ना रहें, रीफाइनेंसिंग इन चक्रों में ना पड़े, उन बस आप कमीशन ही देंगे और उनको अमीर बनाएंगे, और यहाँ पे आप स्किल भी हासिल कर रहे हैं और फंडिंग भी हासिल करते हैं, कोई चलाकी नहीं है इसके अंदर।
0: ठीक है, अच्छा कितना समय कितना लग जाता है जैसे अप्लाई करते हैं तो लोन आने में कितना समय लग जाता है?
1: हाँ जी, 30 से 90 डेज में पहली किस्त आ जाती है क्लाइंट के अकाउंट में, उसके बाद 5 महीने बाद हर 5 महीने में किस्त आती रहती है, 4 किस्तों में पैसे पूरे जाते हैं $1,60,000। अब इस पे कहते हैं कोई क्रेडिट चेक नहीं है, कोई गारंटी नहीं है इसके अंदर, ये नहीं कि अगर आप नहीं दे पाए तो आपका कुछ ये उठा लेंगे, चॉकलेट उठा लेंगे आपकी, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए इट्स अ वेरी गुड थिंग, कोई पर्सनल गारंटी किसी की आपको और भी गारंटी नहीं चाहिए, कोई क्रेडिट चेक नहीं है, आपका स्कोर 0 भी है या माइनस में है तो वो भी आप एलिजिबल है, कोई चलाकी नहीं है इसके अंदर। इतने लोग आते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारी फीस काम होने के बाद कितनी है, $199 क्यों है इतनी कम फीस, लोग ये भी पूछते हैं हमसे असली काम करो तो लोग को तभी शक होता है, क्यों हमें आदत है कि लोग जब तक हमें दूसरा बंदा छीलता नहीं है ना, हमें लगता है यार मजा नहीं आया यार, कुछ गलती होगी, ऐसे यहाँ पर कोई कागज एडिट नहीं हो रहे आपके, कोई सेटिंग नहीं है मेरी बैंकों में, गवर्नमेंट डायरेक्ट आपको फंडिंग दे रही, बीच में ब्रोकर बैंक नहीं है पागल बनने के लिए और बनाने के लिए, इसलिए आपको 2.5% का ब्याज मिलता है ना कि 10% साल का, तो इसलिए पीछे ना रहे, असली काम असली तरीके से 8 साल से कर रहे। नंबर नोट करें 437-234-31-7264-317-5, उन्हें कॉल करो, एस्टिमेट लो 437-234-31-7264-317-5। जी 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड हरिहरनगर डेयरी पे आ जा सकते हैं, पहले एस्टिमेट क्विक करा लें, फिर ऑफिस है एनरोल करें, बैच स्टार्ट होने वाला है 437-234-31-7564-317-5।
0: जी बिल्कुल जी, नंबर तुसी नोट कर लो, ते सरांश नागपाल नूं तुसी कॉल करनी है, पहला अपना फोन ते तुसी अपॉइंटमेंट बनाओ, ऑफिस जाओ, बैठ के गलबात करो, ते थोड़ा लोन है जड़ा एहो अप्रूव हो जूगा। वधिया कोर्सेज करो, अपने आप नूं अपग्रेड करो, नंबर लै लो एक बार फिर 437-234-31-7564-317-5। सरांश थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू थोड़ा। ते लो जी नैक्सट कॉल आपां लैंदे आ, ते साडे नाल आजाद जी जुड़े आ। हांजी सत श्री अकाल भाजी। हेलो जी, कैसे बहुत बढ़िया सर, क्या कहना चाहेंगे जी?
2: देखो जी, मैं तो अब एक ही वक्त कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी 26 अक्टूबर को म्यूनिसिपल इलेक्शन होने हैं ब्रैम्पटन के अंदर या ओंटारियो के अंदर, हम ब्रैम्पटन की बात करते हैं, तो जो ये म्यूनिसिपल इलेक्शन होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन होता है, क्योंकि ये लोगों से जुड़ा होता है बिल्कुल। आप घर से निकलते हो या घर के अंदर, तब भी आप म्यूनिसिपल इश्यू से डील करते हो, घर से बाहर निकलते हो चाहे रोड पे जाते हो, सेफ्टी है, ठीक है ना, सब कुछ आपके उससे, क्लीनिंग है, सब कुछ जुड़ा होता है आपके उससे। तो 26 अक्टूबर को एक बदलाव का दिन है और ब्रैम्पटन के अंदर बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रैम्पटन की जो रेपुटेशन है वो मैं कहूंगा भी ग्लोबल पद्धर पे बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ब्रैम्पटन चाहे कि लोगों को लाइक नहीं करता, ब्रैम्पटन शहर को कोई लाइक नहीं करता, तो एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें पता भी होगा, मैं टाइम टू टाइम काफी सिटी दे मुद्दे चुके हैं, चाहे वो पहले इनका लाइसेंस का इशू था, चाहे वो कैमरा का इशू था, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स इंक्रीज का इशू, माइनर वेरियंट का इशू था, और जेडा सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू था। तो ये जो है ये बदलाव का जो दिन है, ये बदलाव पता की है जी, बदलाव लाने के लिए इंकलाब चाहिए। और इंकलाब इंकलाब कौन लेके आ सकते हैं? इंकलाब जो जनता है वो लेके आ सकता है। मैं सिर्फ ब्रैम्पटन के लोगों को यही कहता कि भी मैं वार्ड 9 और 10 तो सिटी काउंसिलर का उम्मीदवार हाँ, इस बार अगर अपन करप्शन से आजादी दिलानी, अगर अपन नेपोटिज्म जिन्होंने भाई भतीजा वार्ड बोलते हैं उस पर अगर अपन आजादी दिलानी है, डिक्टेटरशिप पे अगर आप आजादी दिलानी है, क्योंकि ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल पे कोई भी काम पब्लिक कंसल्टेशन नाल होता ही नहीं, सिर्फ बायला सिटी हाल तक बन के सिटी हाल तक बह के बनते हैं, एसी रूम तक बह के बनते हैं, सिटी काउंसिल चैंबर तक बनते हैं, लोगों बीच कोई कंसल्टेशन नहीं होता। अगर इन चीजा पे अगर आजादी चाहिए तो सॉरी वो डॉक्टर आजाद दिला सकता है। डॉक्टर आजाद को लेके आओ, ब्रैम्पटन को आजादी दिलाओ। मैं ब्रैम्पटन के लोगों को यही कहना चाहता हूँ, यू गिव वोट टू डॉक्टर आजाद गोयत, एंड डॉक्टर आजाद गोयत विल गिव द ब्रैम्पटन बैक। जो इतने माफिया बना है बिग बिजनेसमैन का, वो जो जो जो पॉलिटिशियन है लोकल पॉलिटिशियन, वो एक बहुत बड़ा माफिया है। उत्थे अपना प्रॉपर्टी टैक्स बहुत चोरी होता है। मेरे को काफी इस तरह की इंफॉर्मेशन है, जिथे जो स्पेस है वो जो यार्ड है वो कॉमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है, 25-25 एकड़ के कॉमर्शियल लोट है, और हैरानी होगी कि उसका प्रॉपर्टी टैक्स एक लोट का $1500 से थले साल का, एक लोट का 1200। अगर जब टेम्परेरी जोनिंग चेंज होती है, कोई भी जोनिंग चेंज होती है, चाहे टेम्परेरी जोनिंग होती है, उसका प्रॉपर्टी चेंज होना चाहिए था, क्योंकि ये जो दो लोट है इनका प्रॉपर्टी टैक्स अगर एमपैक के हिसाब से प्रॉपर यूज ना हो तो $1 मिलियन बनता साल की। इतने जो प्रॉपर्टी टैक्स साल का 1500 या 12000 है, वह सिटी हाल पे एक नेक्सस है, माफिया है, और इस माफिया ने तोड़ने की हिम्मत तक आजाद गोयत बीच है।
0: करोगे जो कई बार आप पावर च आ जाने सीट होंगी है उदो आप कई बार ये भी कह लग जाने भी हूं मेरे कल मैं कर रहा कोशिश पर मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, ऐदा की गल बात नहीं होगी जे तुसी
2: जित के आ जाने। बिल्कुल इस तरह की गल नहीं होगी जी, मैं हर चीज में अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी। देखो असी कितनी बार देखा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बिल्डिंग थी है, जो जो चैनल बोर्ड बिल्डिंग थी जिथे कैमरे कुमरे लाने वास्ते उन्होंने बिल्डिंग बाई की थी, वो बिल्डिंग 2021 पे बीवीजी पेट्रोलियम के विक्रमजीत ढिल्लो थे, उन्होंने 33.4 मिलियन दिख रही थी। फिर वही बिल्डिंग सिटी ने उसे 77.8 मिलियन प्लस जो एक्सपेंसिव उसकी खरीदी थी। तो इतने जो एक माफिया बैठा है जो बिग बिजनेसमैन पहुंचा, तो साडा जो टैक्स पेयर का पैसा है जो सानू लोगों ने टैक्स प्रॉफिट टैक्स का रिलीफ मिलना चाहिए, उसकी बजाय साडा पैसा लोगों की जेब से जाता है। लोग हैं वो सफर करते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ता ही जाता है। पीछे ट्रांजिट का देखो, ट्रांजिट का घाटा है ना, ट्रांजिट का घाटा जो 25 मिलियन थी इन्होंने आर्गो बस चलाई जी डाउनटाउन ब्रैम्पटन च, 10 मिलियन की फंडिंग दी। क्यों? जब तुसी प्राइवेट जब साडे कोल ब्रैम्पटन ट्रांजिट है तो तुहानू आर्गो लैण दी लोड़ की है कि तुसी ऑन डिमांड तुसी लोगों ने घर जाके चुकते हो, तुसी जो रूट है उसका तो सर्विस प्रोवाइड कर दो। तो ये सारा माफिया बैठा है, इन्नी मिसमैनेजमेंट फंड है इत्थे। अगर ये सारी ट्रांसपेरेंसी इत्थे हो तो साडा प्रॉपर्टी टैक्स मैं कहना बढ़ूगा नहीं, साडा प्रॉपर्टी टैक्स घटूगा। ये जो माफिया बैठे हैं हाँ जी, तो मैं बिल्कुल जसविंदर जी ये मैं रेडियो तक कहता कि मैं चेंज करांगा। मैंने 2021 का हार्ट अटैक आया थी जी, मेजर हार्ट अटैक, वाहेगुरु ने मैंने जिंदगी बख्शी थी। मैं उदन पढ़ने दिता थी कि मेरी लाइफ ना लोगों वास्ते है, इसलिए बदलाव एक पॉलिटिक्स का एक नया एरा शुरू होगा। मैं ब्रैम्पटन के लोगों को कहता भी एक ब्रैम्पटन के बीच एक पॉलिटिक्स का एक नया एरा शुरू होना, क्लीन पॉलिटिक्स।
0: ठीक है, अच्छा तुसी डोर टू डोर कैंपेनिंग करन जांदे होणे आ ते की लोकां दे की इशूज हैगे? एक तां प्रॉपर्टी टैक्स तुसी कह रहे हो, होर की इशूज है?
2: देखो जी, लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स का इशू है, सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू है, और कई तौर तो जसविंदर जी इस तरह दे हैं, लोग कहते भी वी डोंट नीड एनी सिटी काउंसिल, वी डोंट नीड एनी रीजनल काउंसिल, वी डोंट वांट एनी स्कूल ट्रस्टी एट ऑल, वी डोंट वांट एनी एमपी एट ऑल, वी आर देयर सो फेड अप बिकॉज ये जो लोग हैं ये लोगों वास्ते काम नहीं करते, जो इनकी ड्यूटी बनती है। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव था उसका फर्ज बनना लोगों वास्ते काम करता। ये देखो सारे करप्शन करते हैं, लोगों का प्रोफिट टैक्स बढ़ता है, लोगों को फैसिलिटी नहीं मिलती, साडा प्रोफिट टैक्स बढ़ता तो यह भी पता होना चाहिए कि साडा पैसा जाता कितने है। ब्रैम्पटन देखो पील पुलिस का जो बजट है ऑलमोस्ट वन वन पील पुलिस का जो बजट है वो टोरंटो पुलिस से भी ज्यादा है, लेकिन सानू सहूलियत कहीं मिलती है। पील तो बहुत छोटा रीजन, टोरंटो देखो तो बहुत बहुत बड़ा शहर है। तो साडा जो पैसा है वो एक है डिप्टी मेयर पूरी की पूरी काउंसिल, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है। देखो पहले आया कि भी मिस्टर का मता आया कि भी पील पुलिस का ऑडिट होना, मेयर साहब ने और सारी जो काउंसिल है चाहे डिप्टी मेयर जेरे मेरे इन्होंने कहा जी नहीं जी ऑडिट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब तुम आप इना पैसा खर्च करते हैं पील पुलिस तो साडा फर्ज बनता कि सानू पैसे की रिटर्न मिलती है, जो आप पील पुलिस का इन्ना बजट लाने कि सानू सेफ्टी मिलती है, क्या साडा पैसा सही लगता है, चाहे चाहे तुम ब्रैम्पटन का ऑडिट देख लो। मेयर साहब ने अपना ऑडिट जो फोरेंसिक ऑडिट था वो खुद कैंसल किया
0: जी,
2: कोई अपडेट नहीं है, कोई टाइम इसलिए लोगों का प्रॉफिट
0: ईवन के जेड़े ट्रांजेक्शन हैगे इन्हां ते देखो जेड़े लोकां दी एडां दे पोस्टर लगे हुंदे छोटे छोटे कोई किते पोल्स सारे भरे पए आ, जेड़े उत्थे ट्रैफिक लाइट्स ते खड़े हुंदे आ ओह कई तां उहनां नूं पढ़ते उन्होंने लाइट ही ग्रीन तो भी रेड हो जाती मुड़ के है, पिछे भी ट्रैफिक जैम हो
2: जाता। देखो जी केड़ा पोल इतने इस तरह का नहीं है ब्रैम्पटन का जिथे साइन नहीं है ना हो जो इस साइन में मेरे आने के बाद ब्रैम्पटन शहर से एक भी साइन नहीं होगा इस तरह का, कोई भी पोल का साइन होगा कि पोल का साइन होता तो फोन भी लिखा होता उसे कॉल करके फोन किया जाएगा, या तो गेट योर साइन क्लीन विदिन 48 आवर or one week, if you don't clean anything, we are going to issue the ticket. We will come to your home.
0: बिल्कुल ठीक
2: है। I will hire the volunteers. I will work tirelessly. I will report myself. और ये जो ब्रैम्पटन का जो शहर है ना, पहले देखो फ्लावर सिटी था, फिर बन गया गोलियां वाला सिटी, क्योंकि गोलियां ही तुम्हें पता है एक्सटोर्शन बहुत होता है, अब शहर की बन गया, अब ये गार्बेज सिटी भी बनने लग गया। क्योंकि ब्रैम्पटन नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा गार्बेज रिसाइकलिंग प्लांट जो है उसकी बढ़ने लग रहा है, जो 190 मेट्रिक टन जो गार्बेज बर्निंग कैपेसिटी उन्होंने बढ़ के 900 मिलियन मेट्रिक टन किया जा रहा है। कौन बोलता है मेयर कितने है, डिप्टी मेयर हरकिरत कितने है, मैं क्यों नहीं बोलता? डिप्टी मेयर हरकिरत में तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत बड़ा इन्वॉल्व है। $24 million जो निवास लिविंग जो अफोर्डेबल हाउसिंग की गल करता है, मैं लॉन्ग टर्म केस गल नहीं करता, तो निवास लिविंग जो अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है जिसे जो डिप्टी मेयर है वो खुद कल्ला जो है ना उसका डायरेक्टर, और वो जो कंपनी फॉर्म हुई नहीं, कंपनी नहीं बनी जी, कॉर्पोरेशन नहीं बना, जमीन की ट्रांजेक्शन नहीं हुई, और सिटी हाल से 24 मिलियन की फंडिंग इन्होंने अपने घर उतरा दी।
0: सिटी कौंसलर दे लई इन्हां ने अपना नामजद किया, सो तुसी इन्हां नूं जरूर इदां दा साथ देना। बाकी आपां आउण वाले समय च इन्हां नाल गल्लां बातां इदां ही करदे रहांगे, जिहड़े इशूज हैगे आ तुसी वी मैनूं सेंड कर सकदे हो वी जदों वी जिहड़े वी हुण इलैक्शन कंटेस्ट करनगे अपना फोन नंबर दे दो।
2: Let's work for a change. क्योंकि ये चेंज एनी भी एक 9-10 होना चाहिए। मैं कहता भी जो रिजर्व जो करंट काउंसिल है उस कोई भी बंदा डिजर्व नहीं करता। Let's bring a positive change and let's make the city great again. क्योंकि बहुत हो गया इन्ना इन्ना। एक चीज और मैं इतने कहना चाहता जी, दौर पे कई बार इन्ना इन्ना उत्थे लोग फ्रस्ट्रेटेड है। मैं कहता भी दूसरी कम्युनिटी के दे दो उनकी तकार को ब्राउन नो देख के कार्ड भी नहीं लेना चाहते, वो कहते वी नो यू गाइज आर करप्ट, यू डोंट केयर अबाउट अवर सिटी। ये जो पोलिटिशियन है ना इन्होंने लोगों ने इन्ना डिवाइड कर दिता, करप्शन करते हैं, सफर असी करते हैं, सफर कम्युनिटी करती है, सारी कम्युनिटी इन्ना सफर करती है, एक दूसरे से हेट करती है। तो मेरे आने के बाद मैं इस तरह का बढ़िया माहौल बनाऊंगा जो पहले होता था कि एवरी बॉडी एवरी कम्युनिटी रिस्पेक्ट इच अदर।
0: जी
2: थैंक यू जसिंदर जी, थैंक यू
0: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू थोड़ा। तो लो जी जरूर जी गलबात आने वाले समय च भी आप करते रहेंगे। तो हूँ हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, तो बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा। तो लो जी गल्लां बातां थोड़े नाल करांगे आपां होर भी, तो जे तुसी चाहुंदे हो भी किहड़े किहड़े क्वेश्चन पुछे जाण बिल्कुल तुसी दस सकदे हो, आपां फिर आने वाले समय च जिहड़ा जरूर गलबात करांगे। क्योंकि ना वैसे जिवें मैं गल कीती साइन लगे हुए आ जां इदां दीआं प्रॉब्लम जिहड़ीआं आपां नूं देखण नूं मिलदीआं इंटरसैक्शन दे उपर है ना, तो उत्थे देखो जिहड़े लोग खड़े उह तां इह पढ़ी जांदे रेनोवेशन वाले कौन है, कोई मसाज वाले, कोई कुछ, तो जबकि वह पोल एन क्लीन क्लीयर होने चाहिए। असी तो जो भी देखते हैं साढ़े घर चो सारे तो फोटो खिंच के सिटी में भेज देंगे भाई आह देख लो है ना, उन्होंने ईमेल भी आ जाती है फिर। सो यी थोड़ा जोड़ा काम है जरूर इदा का होना चाहिए। तो लो जी आप हम नरदेव सिद्धू जी गलबात थोड़ी जी करिए। नरदेव जी स्वागत थोड़ा।
3: ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਣਤਾਪ ਰੇਡੀਓ ਸੌਂਗ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਟਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨੀ ਜੀ
0: ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ
3: ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪੋਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਊਸੈਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡੀਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਟੀ ਕਲੀਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਲੀਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ।
0: ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।
3: ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਰੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਗੇਜ ਕਿਸੇ ਬੀ ਲੈਂਡਰ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮੇਜਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ

0: HK Movers का हो साथ लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात. HK Movers, होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल. वी ऑल्सो शिप कार्स. वी ऑल्सो डू स्टोरेज. 30 years एक्सपीरियंस. वी सर्व विद अ स्माइल. HK Movers, गिव अस अ कॉल. मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704. 416-524-6704.
1: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Movers.

0: फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015
1: A to Z किचन कैबिनेट भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार करदे हन लक्की भाजी दीआं बणीआं किचन कैबिनेट देख के गुआंढी भी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन शीशे नाल भरीआं किचन कैबिनेट वास्ते डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते A to Z किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 ते कॉल कर सकदे हो
2: यार इना इंश्योरेंसा ने ते धुआं कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
3: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनियां बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
4: क्रिटिकल मॉर्गेज आरईएसपी आरआरएसपी विजिटर इंश्योरेंस सुपर वीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे थोड़े कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता थानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
3: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100 647-300-3100
4: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
5: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियों ले खुशखबरी हुण जदों भी तुसी कैनेडियन

0: या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900
1: डॉक्टर कुमार लगे हुए नशियां तो मुक्ति दवाने वास्ते शराब अफीम पोस्त डोडियां दे नशियां तो दूर कर देंदे हैं डॉक्टर कुमार। लेडीज़ां दे मर्दां दे गुप्त रोगां दा इलाज डॉक्टर कुमार। बुजुर्गां दे मोढे गोडे दुखदे आ भाई डॉक्टर कुमार। हर्बल वैगरा भी तुहानूं वेचदे आ डॉक्टर कुमार। हर तरह के इलाज वास्ते डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ग्रेटर पंजाब प्लाजा माल्टन गुरु घर दे कोल डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ते कॉल कर सकते हो।

0: CNE Grand 5050 is on now. Get your tickets today at CNEF5050.com for more chances to win big and support a great cause. You could take home the guaranteed minimum grand prize of $250,000 or even more as the prize grows. Every ticket helps fund the CNE Foundation's community and youth programs. Please play responsibly. License RAF 156-8077.
1: Come and celebrate Toronto and do everything you want at the X.
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at AM530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
3: हेलो
4: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
3: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल
4: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी
3: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो इंडिया किथे जाना
4: चार टिकटा दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी मिल जानगियां
3: बिल्कुल मिल जानगियां दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है बस दसो की टिकटा कदों दी चाहिदियां ने ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने
4: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
5: 32-55-80
6: ते 98
5: एकी गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
6: ओ काउंटिंग नहीं ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने
7: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते
6: 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
5: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 गोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828

मिड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशा बातियां उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज दा ए दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नेशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। अगे चल के सुखी निज साहब वतनों दूर प्रोग्राम पेश करनगे, मनप्रीत जी इंडिया तो खबरां पेश करनगे, नाल किरण भी साथ देणगे। छतरी छाता रिपोर्ट हाजिर है जनाब। 6:19 ते सूरज सिंह आया, 8:25 ते चले जाना। हुण जरा ध्यान नाल सुनना मामे दा की हाल आ। चंद मामा 7:16 ते सवेरे आया ते शाम नूं 9 बजे जाना। खैर अज दा तापमान 28 डिग्री तक, मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड। कल नूं 26 डिग्री, मोस्टली सनी। सैटरडे नूं मोस्टली सनी, 27 डिग्री। संडे नूं सारा दिन छतरी छाता दी लोड़ पएगी, तापमान 26 डिग्री। मंडे नूं सूरज चमकेगा 28 डिग्री, ट्यूजडे नूं सूरज चमकेगा 30 डिग्री तापमान होणगे। स्पोर्ट्स के खेत्र विच वेस्टब्रुक एक बहुत तगड़ा प्लेयर है NBA का। 18 साल लगातार खेल के हुण वो रिजाइन करता। जिहड़ी लेकर्स है वो विकी है, जिहड़ा सारा क्लब है, 12.5 बिलियन डॉलर US नाल। ते ब्लू जैट ने कमाल करती जी, ओह राती 6-4 दे फर्क नाल जित्या। इस तरह जिहड़ी वन ऑफ द बेस्ट ते हॉट टीम सीगी बोस्टन रेड सॉक्स, उन्हां नूं लगातार 3 बार हराया है। अज मेरे ख्याल 3:30 उन्हां दा चौथा ते अखीरला मैच होएगा। उधर जिहड़ा मैसी है कहिंदा यार मेरा हुण खेलण नूं दिल नहीं करदा हैगा, 39 साल की उम्र भी होगी, क्योंकि पिछले हफ्ते ओहदे फादर दी डैथ हुई जिहदी उम्र 68 साल सी। ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਏਜੰਟ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੂਡ ਜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਖੇਲਣ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 7.4 ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ, 265 ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰੇ ਲੱਭੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਆ।

0: Ataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Rupert Airport and Derry, the intersection Rupert. To see cheap flight tickets, si Pal de Vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options, sono chahide ne. Jan to see visa services, si Pal de Vecho, puri family vacation Rupert jandi socho ne, jithe tanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna waji Ataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection Rupert. Call kar sakde ho 905-678-1200, 905-678-1200, Ataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection of Derry.
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
3: आज खुश तो बात होगी
4: ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨੋ ਬਫਰਿੰਗ ਵਾਲਾ 4K ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ IPTV ਬਾਕਸ ਹੋਵੇ।

0: दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस लेना बहुत सौखा है पर सही सपोर्ट तो बिना काम करना बिल्कुल सौखा नहीं। इंश्योरेंस फील्ड हजार लोग आते ने ते हजारा ही जाते ने पर सिर्फ प्रोफेशनल एडवाइजर ही टिके रहते ने।
1: जेकर तुसी एक लाइसेंस इंश्योरेंस एडवाइजर हो या फिर तुसी भी लाइसेंस लेके अपने क्लाइंट से ले सही पॉलिसी ते प्रोफेशनल काम करना चाहते हो तो फिर आज ही टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू के नाल संपर्क करो।
0: कॉल 416-457-3381 416-453-3381।
1: टॉप फाइनेंशियल दा नवा ब्रैम्पटन ऑफिस एयरपोर्ट एंड क्वीन दे बिल्कुल नजदीक 70 डेल्टा पार्क बुलेवर्ड यूनिट 11 ते लोकेटेड है जिथे एडवाइजर्स ले बिना कोई फीस बिना कोई चार्जेस तो मॉडर्न ऑफिस अते फैसिलिटीज अब पूरा एक्सेस है।
0: टॉप फाइनेंशियल दे इंश्योरेंस एडवाइजर्स दे ले पहले ही दिन तो हाईएस्ट कमीशन पैकेज डेली इन ऑफिस ते ऑनलाइन ट्रेनिंग ते हर एक मेजर इंश्योरेंस कंपनी दे नाल डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दा भी प्रबंध है।
1: हाँ, इंश्योरेंस एडवाइजर चाहे नवे हो या पुराने चाहे एक्टिव हो या पार्ट टाइम या फिर तुसी सब तो वधिया ब्रोकरेज दी भाल विच हो अज ही संपर्क करो टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू दे नाल 416-457-3381 416-457-3381।

0: रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे। जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटल ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस।
1: राजधानी के किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक। QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें।
0: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा।
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
3: ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 6475041557 6475104 1557। ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 4164772040 4164720